नहीं हो अज रथा नहीं हो तेरी दानी नी दानी नी दानी नी दानी नी नी बाबा मामा मागा गागा थागा नी जा अज रथा नहीं हो तेरी दानी नी बड़ी बाबा गामा का धन धागा था अज रथा नहीं हो गागा धन धागा

कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी।